0: फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे तो ये उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो, सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है।
1: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ।

और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं, तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें, और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में कयामत के रोज उनका फैसला कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है।

0: गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती
1: क्रेट मेहरान आयरन स्टोर नज बलो नेशनल हाईवे हालानी
0: प्रोपराइटर 3222 7202 6

0: ढोर चारो मसालो आज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
1: हां भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ही थो वठी अचा
2: जी जान चारो मसालो हर वेजे

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध असेंबली में सिंध के विरांगे खिलाफ एक वधिक यकराव ठहराव मंजूर थियण बावजूद सिंध के विरांगे जो हुकुमरान जमात नून लीग भी नवन सूबन इंतजामी यूनिट की हिमायत में खुलियल नमूने सामू अची वही। वफाकी वजीर अहसन इकबाल मुल्क 15 नवा सूबा कायम करण की तजवीज डींदे है तो सिस्टम घुर्बल नतीजा न पो डे, हर सूबे के टिन हिस्सों में विरहण घुर्जे। मुल्क में नवा सूबा ठाण लाय जायज कमेटी जोड़ी कौमी ए सियासी बहस शुरू कई वे। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ इंतजामी ढांचे के पुरानो इंतजामी यूनिटन के जरूरी करार डींदे है तो सिंध असेंबली पैं ठहराव मंजूर कर सके थी, पर यो मामलो वफा तो सिंध असेंबली में जो ठहराव मंजूर थो अड़ा पे भी मंजूर थी चुका है।

0: खेल असेंबलीअ में ठहराउ पेश करणु ॾिनो वियो। स्पीकर दॿाउ में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहं जे ऐवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं। मुख़ालिफ़ धुर सिंध जे विरहाङे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधू देश जे कूड़नि इंतज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधू देश हुजे या जिनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीद सिंधू देश जे बयाने खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो आहे त सिंध असेंबली जो कालो को ॾींहुं तारीख़ी हो। धरतीअ जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एम पी एम इजलास जो बाइकाट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पी टी आई ऐं जमायत इस्लामी बे ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो। हुकूमत पेट्रोल मामूली सस्तो ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। पेट्रोल 3 रुपया 13 फ़ी लीटर सस्तो ऐं डीज़ल 3 रुपया 74 पैसा फ़ी लीटर महांगो कयो वियो। पेट्रोल जो नओं अघु 345 रुपया 87 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 378 रुपया 5 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 7 सेप्टेम्बर ताईं लागू हूंदा। महांगाई जे घाणे में पीसिजंदड़ आवाम खे पेट्रोलियम बम हमले खां पोइ बिजलीअ जो झटको। नेप्रास जे मुल्क जे वापेदारनि लाइ माहवार ऐं टे माही एडजस्टमेंट जे मद में बिजली महांगी करे छॾी। माहवार एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपया 6 पैसा ऐं टे माही एडजस्टमेंट में 52 पैसा फी यूनिट महांगी करे जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि माहवार एडजस्टमेंट जे वाद सेप्टेम्बर जे बिलनि में लागू कई वेंदी। जुलाई जे फ्यूल एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: 0309 0300-310-5109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम, पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए एथी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म। लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03008569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी।
2: अई अदी, अज तो दाढ़ी खुश पई नजर अची।
3: छो न खुश थिया?

0: दी जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं
1: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-2724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-3992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बिलावल भुट्टो जरदारी जी लंदन में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सिंध के विरांगे वारे मामले ते पीपी जे मौकिफ ते जमीरण जो फैसलो। जरियन जो चवणा है ते मुलाकात पंज कलाक जारी रही। मुल्क जे सियासी सूरत हाल ते गाल बोल मुशावरत कई वही। अमेरिका सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर जा नंढा बम विक्रो करण जी मंजूरी दई छी। 750 मिलियन डॉलर जू ए जी टी जे इंजनू भी डिन्यू वेंदियूं। अमेरिकी परडेही खाते तस्दीक कंदे चयो आहे त हथियारन जी फराहमीअ सां सऊदी अरब जी दिफ़ाई सलाहियत बहितर थींदी। रियासी में अवामी तहरीक जे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली। सिंध के हिस्से जो पानी देने जो भी मुतालबो किया है। अगवानन मूजिब सिंध के विरान वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वी। साजिशों बंद करे सूबे के पानी समेत समूरा आइनी हक डिना वन।

खिकरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोदर जा वार करे मर्डिंग करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। नारायण भील हमिलो करे मामी ऐं मामे अर्जन खे संदसि घरवारी प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाके जो मीरपुर रोड ते कणक जे गोदामनि भरिसां वाकियो पेश आयो आहे। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु अस्पताल मुंतक़िल कया विया आहिनि। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे। लाड़काणे में विन दौरान फौत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ो जे वारसन SP चौक ते लाश रखी धरणो हुयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि डॉक्टर्स जी घबरत सबबि औरत फौत थी आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई,
2: 3592102.
3: दुकान जी बेट हलंदी।
4: हाँ दा कारो

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पेट्रोलियम लेवीअ जे मद में अवाम खां रिकॉर्ड उगाड़ी। शहबाज शरीफ में अवाम मुल्की तारीख जो महांगो तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम खां लेवीअ जे मद में 3,137 अरब खां वधीक उगाड़ी करे चुकी आहे। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीजल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्त बि पेट्रोल ऐं डीजल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे, जॾहिं त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़ी वेंदी आहे। अमरीका सऊदी अरब खे 5 अरब डॉलर जा नंढा बम विकिरो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। 750 मिलियन डॉलर जूं IGT इंजनूं बि ॾिनियूं वेंदियूं। अमरीकी परॾेही खाते तज़ी कंदे चयो त हथियारनि जी फरहमी सां सऊदी अरब जी दिफ़ाई सलाहियत बहितर थींदी। कराचीअ जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 सालनि जे हुज़ैफा जो केस अलॻि हूंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी फ़रस्त बि अदालत में जमा कराए छॾी। बिरयासिटीअ में अवामी तहरीक जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिबि सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणी समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि। नवाबशाह ऐं खीरपुर में पीटीएल जे मुतालबनि जी मञता लाइ रैली ऐं धरणो। प्राइमरी उस्तादनि शिराज चौक खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब आॾो धरणो आयो। अॻवाणनि चयो त बहिराड़ीअ जे स्कूलनि में फर्नीचर समेत मुख़्तलिफ़ सहूलियतुनि जी खोट आहे। हुकूमत स्कूलनि ऐं उस्तादनि जा जाइज़ मसाला हल कया वञनि। खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मर्निंग करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। नारायण भील हमिलो करे मामे अर्जन ऐं संदसि घरवारीअ प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकियो मीरपुर ख़ासि रोड ते कणक जे गोदाम भरिसां पेश आयो। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे। लाड़काणे में वियम दौरान फौत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासिन औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ जे वारसनि SSP चौक ते लाश रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि डॉक्टरनि जी गफ़लत सबबि औरत फौत थी आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ऐं ठुल में 4 साल अॻु क़तल थियल नींगरी अब्दुल गनी दाऊद पुट जा कातिल गिरफ़्तार न थिया। वारस एहतजाजनि शहर छॾे विया। गढ़ी खुदा बख़्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार आॾो एहतजाज करण जो ऐलान।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तोकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03-0003-1-05-109-03-00-3-1-0-5-1-09।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03005569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

उठिए, कहीं दीप जले, हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तीन मरीज।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मीरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सूबा चओ या इंतजामी यूनिट एम के एम पंहिंजे मौक़ ते बीठल आहे। एम के एम पंहिंजो मौक़ तब्दील न आहे कयो। भुटो जो ठहियल आईना ऐं नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूद आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम के एम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि 15-20 माण्हुनि में विरहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालत बि इंतिहाई ख़राब आहे।
1: पेट्रोलियम लीवी जे मद में अवाम खां रिकॉर्ड उगाड़ी। शहबाज हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख़ जो महांगो तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम खां लेवी जे मद में 3,137 अरब खां वधीक उगाड़ी करे चुकी आहे। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीज़ल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्त बि पेट्रोल ऐं डीज़ल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे। 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़े वेंदी आहे।
0: पीटीआई जे सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी। केपीए जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी अॻवाणीअ में रैली ठारू शाह खां पहुची वई। सोहेल आफरीदी क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर ज़फर अली शाह सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदी चयो त जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची जी अदालत में गुल पिलादा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 सालनि जी उज़ैफा जो केस अलॻि हलंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी आहे। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी लिस्ट बि अदालत में जमा कराई।
0: कंदकोट वेझो मुड़ुस कारां इल्ज़ाम हेठि ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ए सेक्शन थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कार जे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। पुलिस मूजिबि जवाबदार फरार थी वियो आहे। खेसि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वधीक जांच बि जारी आहे।
1: मलीर में सिटी पुलिस जी मुबैना तशदुद में मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो धरणो। पुलिस
0: भरिया सिटीअ में अवामी तहरीक जे सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिबि सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणीअ समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।
1: नवाबशाह ऐं खैरपुर में पेट ऐं लिफ़ जे मुतालबनि जी मंझताला रैली ऐं धरणो। प्राइमरी उस्तादनि शिराज चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब वॾो धरणो आयो। अॻवाननि चयो आहे त बहिराड़ी जे स्कूलनि में फर्नीचर समेत मुख़्तलिफ़ सहूलियतुनि जी सख़्त खोट आहे। हुकूमत स्कूलनि ऐं उस्तादनि जा जाइज़ मसला हल कया वञनि।

खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मरणी करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार नारायण भील हमिलो करे मामे अर्जुन ऐं संदसि घरवारी प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकियो मीरपुर ख़ास रोड ते कणक जे गोदाम भरिसां पेश आयो। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे।

0: लाड़काणे में विम दौरान फौत थियल औरत जे वारसन जो लाश रखी धरणो, जिम्मेवार डॉक्टर्स खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कारूनी वारसन औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर बलोड़ जे वारसन एस पी चौक ते लाश रखी धरणो आयो। मुज़ाहिरीन मूजिब डॉक्टर्स जी गफलत सबब औरत फौत थी आए, जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
1: ठुल में चार साल अग कतल थियल नीगर अब्दुल गनी दाऊद पुट जा कातिल गिरफ्तार न थिया। वारस एहतजाजन शहर छड़े व्या। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद बेनजीर भुट्टो जी मजार आडो एहतजाज करण जो ऐलान। मकतूल नीगर जे वारसन मूजिब पुलिस जवाबदारन के गिरफ्तार करण में मुकमल तौर ते नाकाम वई आहे। कातिल गिरफ्तार कया वञनि।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

एमकेएम पंहिंजे मौक़ ते बीठल आहे। एमकेएम जो पंहिंजो मौक़ तब्दील न आहे कयो। भुट्टे जे आईन ठहियल में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एमकेएम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालति बि इंताही ख़राबु आहे।

0: ही कॾहिं सिंध जे विरांगे ऐं कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। बिठो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि, न ही भाई सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा कराची खे विराइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरियां पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपयनि जी बजट जो हिसाब ॾे।
1: पेट्रोलियम लेवीअ जे मद में अवाम खां रिका ट्रोड़ो गाड़ी। शहबाज़ हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख़ जो महांगे तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम खां लेवीअ जे मद में 3137 अरब खां वधीक उगाड़ी करे चुकी। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीज़ल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्ति बि पेट्रोल ऐं डीज़ल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे, जॾहिं त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़ी वेंदी आहे।
0: जमात इस्लामी तेल जे अघनि में वाद ख़िलाफ़ हुकूमत खे फीथा रोक हड़ताल जो चिताव ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत मसलो हल न कयो त फीथा रोक हड़ताल तरफ़ ईंदासीं। पेट्रोलियम लेवी जो तेल जे अघनि सां को बि वास्तो न आहे। हुकुमराननि ऐं ब्यूरोक्रेसीअ जे ऐशियुनि जो बार ग़रीब अवाम ते विधो पियो वञे। आलमी मंडीअ में तेल महांगो थी रहियो आहे त पेट्रोलियम लेवी ख़तम करे छॾियो।

0: जे अगवाणी में रैली ठारू शाह पहुंची वही। सोहेल आफरीदी कौमी असेंबली के अगूणे डिप्टी स्पीकर जफर अली शाह से भी मुलाकात कई। सोहेल आफरीदी तो जमहूरियत ला जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची की अदालत में गुल प्लाजा केस की बुधड़ी पुलिस आलान अदालत में जमा कराए छो। तनवीर पास्ता मुख जवाबदार करार। 11 साल की उज़ैफा जो केस अलग हलो। दखण की अदालत में केस की बुधड़ी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता इन बया अदालत में पेश थे। पुलिस आलान से गड 85 शाहिदन की लिस्ट भी अदालत में जमा कराई।
0: कंदकोट वेझो मुड़स कार इल्ज़ाम हेठ ज़ाल के कतल कर छो। ए सेक्शन थाने के हद गोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्जोई ज़ाल ज़ोरा के कार इल्ज़ाम हेठ कतल कयो। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वया है। खेस जल्द गिरफ्तार कयो वेंदो। वधीक जांच भी जारी है।

मलिर में सिटी पुलिस ने मोबाइल तशद में मारजी वेल नौजवान के वारसन जो धरणो। पुलिस नौजवान के वारसन के कौमी शाहरा से धरणो का रोके छो। नौजवान इरशाद बलोच के वारसन मेमण रोड से धरणो हयो। वारसन मूजिब नौजवान के बेगुनाह कतल कर इंसाफ कर वे।

0: तहरीक जो ठटे टंडरो जान मोहम्मद ए बिरया सिटी में मुख्तलिफ रैलियों सिंध के हिस्से जो पानी दियण जो भी मुतालबो कयो वियो। अगवाणन मूजिब सिंध के विरायण वारी साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी। सिंध खिलाफ साजिशूं बंद करे सूबे के पानी समेत समूरा आइनी हक डिना वञन।
1: सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पेटे अलिफ जो मुतालबन की मंशा लाए एहतजाज। स्कूलों के सहूलतूं डेण जो भी मुतालबो। हैदराबाद मटियारी नवाबशाह सागढ़ और खैरपुर में प्राइमरी उस्तादन एहतजाज कयो। अगवाणन चयो आहे त तालीम खातो प्राइमरी उस्तादन जा जायज मसला भी हल करण लाइ तैयार न आहे। उस्तादन जा मसला हल कया वञनि।

कराची में जूनियर साइंस टीचर टेस्ट पास उम्मीदवारों जो एहतजाज 35 दिन का एहतजाज जारी 50 का वधिक मार्कों खणंदड़ उम्मीदवार प्रेस क्लब बाहरा कैंप ते एहतजाज करे सख्त मुजाहरो कयो। मुजाहरी जो चवण है 50 मार्कों खणंदड़ उम्मीदवार के पास करार दई नौकरियों देने जो मुतालबो कयो।

0: हैदराबाद के इलाके कासमाबाद के शीदी गोठ में गटरन अंदर विछायल गैस पाइपलाइन में धमाका। अनवर उल्लास भरसा गटरन अंदर विछायल गैस लाइन के धमाकन सबब इलाके में खौफ पखिड़ी वो। सीसीटीवी फुटेज में धमाकन सबब खौफ विचा मानुन के भजंदे दिसी सकजे थो। शहरीन पारा गैस लाइन की मरम्मत करण जो मुतालबो।
1: लाड़काणे में वियम दौरान पोथियल औरत के वारसन जो लाश रखी धरणो। जिम्मेवार डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासन औरत नाजिया जाल अब्दुल शकूर कलोड़ के वारसन एसएसपी चौक से लाश रखी धरणो हो। मुजाहरीन मूजिब डॉक्टर की गफलत सबब औरत फोथी है। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
2: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन खा आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे
2: इरशाद ऑटोस ऐ होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद ऐ बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐ होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जेह में मिले थी मोटरसाइकिल जी कार कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ तीन दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ तीन दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
8: اسلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھاک جے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
9: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
10: 0301-399-2836 मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
10: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: असलाम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। थींदी आहे।
5: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
7: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
6: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: आरजी या जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, आरजी या जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, प्यार दे ए प्यार वठ कैसा न तकरार कर। एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, गुलफाम गुल सादो थी रह, हर मानु सा तू प्यार कर, हर मानु सा तू प्यार कर।

0: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी है। डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारो मसालो ढोर सेहतमंद जी जान चारो मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03003385।

0: सारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरल लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पंजाब या सिंध की सुजाणप तब्दील न थींदी, पंजाब पंजाब सिंध भी सिंध ही रहंदो। जेकॾहिं अवाम चाहे थो त नवा इंतज़ामी यूनिट ठहण घुर्जन, न चाहे त न ठहण घुर्जन। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते बि जज़्बाती थियण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स नसल परस्तीअ जी बुनियाद ते न पर मसइलनि जे हल लाइ ठहण घुर्जन। पार्लियामेंट ऐं मीडिया खे बि नवनि इंतज़ामी यूनिट्स बाबति किरदार अदा करणु घुर्जे। इंतज़ामी ढांचो असर विञाए वेठो आहे, रीसेट घुर्बल आहे। रीसेट जो मक़सद निज़ाम खे टोड़णु न आहे, रीसेट जो मक़सद ग़लति शइ खे ठीकु करणु आहे। असां खे आईन जे अंदर रही करे ई कमु करणो आहे। नवा सूबा ठाहिण सां मसइला हल न थींदा, मुस्तक़बिल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासीअ चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मशावरत कंदा हुया, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबी हयात पखिड़िजी वेंदो। आईन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भले जेतिरा वणेव सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरीअ चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढनि इंतज़ामी यूनिट्स क़ाइम आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबलीअ जे स्पीकर मलक अहमद ख़ान चयो त सुठी हुकूमत निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा, नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि। पंजाब सिंध केपी ऐं बलोचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइन फ्रॉड जी मौजूदगीअ ताईं सुधारण जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी। सूबा चओ या इंतज़ामी यूनिट MQM पंहिंजे मौक़ुफ़ ते बीठल आहे। MQM पंहिंजो मौक़ुफ़ तब्दील न आहे कयो। भुट्टो जे ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे MQM अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे, सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि, शहर जी हालति बि इंतिहाई ख़राब आहे। ही कॾहिं सिंध जे विरांगे जी, कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिट जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसइला हल न थींदा, ॿिटो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि, न ई भाईअ सां सचा आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वाहब चयो त कराचीअ खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौरु ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वाहब जो दौरु आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजेट जो हिसाब ॾे। लंडन पाकिस्तान जे सियासी मुलाक़ातुनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि चयो आहे त वज़ीर आज़म नज़ीर तारा जी सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात बाद 18 आइनी तरमीम ते मुसबित। बिलावल सां मरियम जी मुलाक़ात बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं। अठनि आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। अठनि ई आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत 8 आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो।

जमायत इस्लामी तेल के अगन में वाद खिलाफ हुकूमत के फीथारो हड़ताल जो चिताव दई छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज नईम चयो त हुकूमत मसलो हल न कयो त हड़ताल तरफ वेंदासीं। पेट्रोलियम लेवी जो तेल के अगन से को भी वास्तो न आए। हुकुमरानन ए ब्यूरोक्रेसी के अयाशन जो बार गरीब आवाम से विधो पो वे। आलमी मंडी में तेल महंगो थी रो है तो पेट्रोल लेवी खत्म थियण घुर्जे। पीटीआई की सिंध में स्ट्रीट मुम जारी। केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी की अगवाणी में रैली ठारू शाह खान नौशेरो फिरोज पहुंची वही। सोहेल आफरीदी कौमी असेंबली के अगूणे डिप्टी स्पीकर जफर अली शाह से भी मुलाकात कई। सोहेल आफरीदी चयो तो जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।

0: गुल प्लाजा के मुख्य जवाबदार करार 11 साल की हुजैफा जो केस अलग लंघो। दखण की अदालत में केस की बुधनी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ए बी अदालत में पेश थे। पुलिस चालान से गड 85 शाहिद की फरस्त भी अदालत में जमा कराए छी। कंदकोट वेझो मुड़स कार इल्जाम हेठ जाल के कतल कर छो। ए सेक्शन थाने के अध गोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्जोई जाल जोरा के कार इल्जाम हेठ कतल कर। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वह खेस जल्द गिरफ्तार किया वो जांच भी जारी है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
4: अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। थी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
8: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: आहे।
1: भला मुखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
0: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे। उहे पंहिंजे जीजान सां खरचारो मसालो पिया खारो, ढोर रुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾोगॾु।
1: वाह सुहिणा, पर किथे मिलंदो इहो जीजान सखर चारो?

0: लेजर क्लीन 100 मिनट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: डंडा आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह खमीस सुबह हर जुमे छंछर आचर से चेकअप कयो वी रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी गलो पुरानो नज़लो निछो नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जल वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों जो कयो वने 201-96-8851।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा आशिक होंडा मोटर्स।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
1: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब आपके अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर लेकर आए हैं पूरे जिस्म के गैर जरूरत खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराब पर, 0300-338-5569।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8343

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: और इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है। ये वो चीज है जो अगर पब्लिक के दिल की आवाज है तो ये हर सूरत होगी और इंशाल्लाह होके रहेगी।
2: जज्बाती न थियो, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्ज सियासी जमात या नुमाइंदो रोके नथो सके। इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमत की तादाद बताने न पर निजाम के बेहतर करना है। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहो, रुगो अख्तियार हेठी सतह तीन मुंतकिल नौकरी से रहा या न रहा मामले का पोते न टस। लाहौर में तकरीब का खिताब करें पार्टी का वजीर मोहसिन नकवी चयो तो मामले से सियासतदानन का वधिक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवा इंतजामी यूनिट से पंजाब या सिंध की सुणप तब्दील न थी। नवा इंतजामी यूनिट भी नसल या बिरादरी की बुनियाद से न पर बेहतर हुकमरानी लाय ठहन घुर्जन। मौजूदा निजाम नतीजा न दई रो है, रीसेट करणो पवो। असो मकसद हुकूमत या सियासी जमात के तब्दील कर न पर निजाम में मौजूदा खामियन के खत्म करना है। नव सूबो ठहणो है तो इस्लामाबाद के सूबे जो दर्जो मिलन घुर्जे। नवन इंतजामी यूनिट्स से घबराने की जरूरत ना है। मामले के सियासतदानन का वधिक अवामी राय अहम है। पाकिस्तान के मफाद में थींदड़ फैसला सभी के तस्लीम करना पवंदा। पीपल्स पार्टी सिंध इम्कानी विरागे खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव पास थे बावजूद वफाकी वजीर के तकरारी बयान के सूबे की आइनी हैसियत में गैर आइनी मुदाखलत करार दई छो। समूरी सिंध में एहतजाज जो फैसलो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़े की सदारत हेठ पार्टी जो अहम इजलास। सिंध विरागे खिलाफ ठहराव मंजूर थे बावजूद वफाकी वजीर पारा नवन सूबन इंतजामी यूनिटन बाबत दिनल बयान के सख्त लफ्जन में मुजम्मत कई वही। सिंध इम्कानी विरागे खिलाफ डिवीजन्स जिलन ए तालुकन में एहतजाज जो फैसलो इजलास में वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर के नवन सूबन इंतजामी यूनिटन बाबत बयान जो नोटिस वे अड़ा बयान देने का रोके। सिंध असेंबली में ठहराव मंजूर करने पीपीएमपीएस सदर आसिफ अली जरदारी बिलाल भुट्टो के भेटा पेश। सिंध के विरागे खिलाफ करारदार के वोटिंग में हिस्सों न वन जमात के सख्त तनकीद। नवा सूबा ठहण से मसला हल ना, मुस्तकिल हल घुरणो पवो। अगोड़े वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवन सूबन बाबत नेशनल पॉलिसी डायलॉग के खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी सूबाई हुकूमतों बादशाह का भी बुरे अंदाज में हली रही हैं। बादशाह भी मुशावरत कंदा हुआ, असाजा सूबा हिदायतन से हली रहा है। नून लीग के फज साद रफीक नंढा सूबा ठहण से आबहार पखड़ी वो आईन की तोहन करनी है तो भली जेतरा बणो सूबा ठाए छो को भी फर्क न पवो। मुमलकती वजीर अरुण चौधरी तरक्की याफ्ता मुल्क में नंढा इंतजामी यूनिट कायम है। नवन इंतजामी यूनिट्स से पार्लियामेंट अंदर बाहर बहस थे घुर्जे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान सुठी हुकूमती निजाम लाय वा सुधारा आना पवंदा। अवामी नुमाइंदन के अख्तियार दियण बिना मामला अगत न वा इंतजामी इख्तियार चूडियल नुमाइंदन वट हुजन घुर्जे। पंजाब सिंध केपी बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिजनेस आइन से टकराव में आइनी फ्रॉड की मौजूदगी तीन सुधारण की गाल पे मायने होंगी। इंतजामी सुधारा सूबन के नए सिर जोड़ जक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला सूबा रुगो इंतजामी यूनिट ना पैंजी तारीख सुणप सकाफत बोली आइनी हैसियत है। सिंध जो अवाम पैंजी सरजमीन तारीख ए सुणप के बारे में बार बार वाजह गडियल राय दे चुको है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
4: मालवन भारन लाए खुशखबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्ड एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश बाजार ऑपरेटर।

जी कराए ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कार कर देगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: आई आदी अज त डाडी खुश पे नजर अची
1: छो न खुश थे आदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वालन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां भी वही चवान ढोर सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी

0: लेजर क्लिनिक नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अव सभी बुद्धन के खुश आमदीद चूं था। प्रोग्राम आए सेहत की गाल असे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमूर साहब। जी मुख्तलिफ़ बीमार माहिर डॉक्टर जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुराणो नज़लो नच्छू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन औरतन ए मर्दन के पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कंदा असाजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 0301-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम पगे 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मैरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा है। अंगारे जी डी क्लिनिक बंद होंगी है इनमें हफ्ते जा 3 दिन जुम्मो 6

0: अब हिन महिल तव्हां ॾिसो था जीअं मौसम चेंज थी थिए त हिन महिल हिकु न ॿिए माण्हू खे ज़ुकाम नज़लो गलो ख़राबु थिए थो त इन जा सर कहिड़ियूं अहिड़ियूं आहिनि एहतियाती तदाबीरूं जंहिंजे असां करे असां जेको हिन सर बचाव करे सघूं था पंहिंजनि बीमारियुनि मां?
1: जी साईं, बिल्कुलु तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे ऐं इहो अहिड़े क़िस्म जी अवेयरनेस पहिरियां बि ॾींदा आहियूं, हाणे बि ॾियूं था पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं त हिकु त मौसम तब्दील थियण सां जेको आहे सो खोड़ सारियूं वरी नयूं नयूं बीमारियूं बि जेको आहे सो पैदा थींदियूं आहिनि। हिकु त आम बीमारी मिसाल हींअर मच्छर जो वरी आमद आहे ऐं मलेरिया यानी मच्छर यानी मलेरिया। सो मलेरिया जो जेको आहे सो थियणु यानी पाण खे ख़बर अथव त केतिरो पेशंट तकलीफ़ुनि में अची वेंदा आहिनि। इन खां बहितर इहो आहे त अहिड़ा माण्हू पाण जा एहतियाती तदाबीर करे जंहिंसां मच्छ मलेरिया न थिए त बहितर आहे। हिकु त कमरे में जेको आहे सो यानी अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो था जेके असां बत्ती मिलंदी आहे जेकी उहा ॿारे माण्हू ऐं इस्तेमालु करे सघे थो, उन सां जेको आहे सो इहे मच्छर वग़ैरह या नेट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे। या आम सिंधी तेल असांजो जेको हूंदो आहे न ख़ुशबूदार तेल हूंदो आहे ऐं कुदरती तेल आहे सरिहं जो तेल, उहो हणी सुम्हण सां बि अवां जेकॾहिं ॾिसंदव त तव्हांजे वेझो मच्छर हरूभरु न ईंदो। माण्हू घणा मॉस्किटो लोशन हणंदा आहिनि, उहो स्किन जे लाइ तमामु हानिकार आहे नुक़सानकार आहे। या जेके जलेबियूं ॿारींदा आहिनि उहे नुक़सानकार हूंदियूं आहिनि ऐं उहो साह जे नालियुनि में वञी करे जेको आहे असांखे एलर्जी पैदा करे सघंदी। या के जेके एलर्जी जा पेशंट हूंदा आहिनि उन्हनि जे इस्तेमाल सां उहा एलर्जी उन्हनि जी वधी वेंदी आहे। इन जे करे या जेके निम जा पन पता हूंदा आहिनि उहे साड़ण सां बि अवांजे घर में जे वेझो जेकॾहिं साड़ींदो त उन सां बि मच्छर अवांजे वेझो जेको आहे सो न ईंदो आहे। इहो हिकिड़े क़िस्म जो मच्छर खां बचाव जो जेको आहे सो तरीक़ो ॿुधायो तव्हांखे। जी सर, काल जी तरफ़।
0: जी सर, तमामु बहितरीन सर। काल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।
2: मां नज़र हुसैन थो ॻाल्हायां। सांवरे रंग जी का दवा त ॿुधायो।
0: अच्छा, ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर,
1: सो सांवरो रंग जे खोड़ सारा जेको आहे सो मसाइल हूंदा आहिनि। छो थियो आहे, हिकिड़ो कुदरती हूंदो आहे, हिकिड़ो माण्हू किथे कमु अहिड़ो कंदो आहे घणो सूरज में यानी सिज जे हेठां हुनजो घणो कमु हूंदो आहे उनजे करे थींदो आहे या ॿियूं बि खोड़ सारियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि। उनजे करे उनजी दवा ववा जेको आहे सो पेशंट खे ॾिसी करे ऐं उनखे उनजे हिसाब सां ई जेको आहे सोप्स हूंदो आहिनि या क्रीम हूंदी आहे वरी ऐं इहो असां पहिरियां बि मनो करे चुका आहियूं, हाणे बि मनो कयूं था त अहिड़े क़िस्म जी जेके कमर्शियल क्रीम्स या सोप्स जेके तव्हांखे स्टोर्स ते मिलनि था जनरल ते उहे हरगिज़ इस्तेमालु न कयो। उहे सिर्फ़ु चमड़ी खे साड़ींदियूं आहिनि। सो इन जे करे जेको कुदरती पंहिंजो चहिरो हूंदो आहे कुदरती रंग हूंदो आहे उहो ई रहंदो आहे, लेकिन चहिरे में रौनक अचणु चहिरे जी सफ़ाई अचणु उन जे लाइ अलबत दवाऊं असां वटि होम्योपैथिक में क्रीम्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि जेके उनजे इस्तेमालु करण सां पंहिंजो कुदरती रंग या उन में बहितरी जेको आहे सो अची सघे थी सिर्फ़ु उन सां। उन खां अलावा फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु आहे, जूसिस जो इस्तेमालु, पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। जी साईं, हलूं था मौज़ू जे तरफ़ त ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि कईसीं मलेरिया जी, ॿियो टाइफाइड। टाइफाइड बि हिन मौसम में जेको आहे सो आम हूंदो आहे। इन जे करे टाइफाइड खां बचण जे लाइ तव्हां पंहिंजा जेके बि खाधो खाईंदा आहियो बर्तन ढके रखो त पैदा जीअं उन ते मख जेको मख ॾिसो कहिड़ी बि गंदगी ते वेही करे जॾहिं अव्हांजे खाधे ते वेंदी त उहो जरासीम उन में विझी वेंदी आहे जंहिंखां पोइ तव्हांखे जेको आहे सो टाइफाइड थी सघे थो। उन खां पोइ हींअर जीअं जीअं थोरी घणी केॾी महिल राति जो थधि पए वेई थी या केॾी महिल हवायूं लॻनि थियूं त उन सां एलर्जी ज़ुकाम नज़लो खांसी गले जूं ख़राबियूं, हिन वक़्तु गले जो वायरस बि आम थी पियो आहे, गले जी वरी ख़राबी थी सघे थी जंहिंजे करे अव्हांखे तकलीफ़ में अची सघो था। इन जे करे उनजे लाइ एहतियाती तदाबीर इहो हूंदो आहे जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी राति जे टाइम में पाणी गरम करे उन में हेड विझी या लूणु विझी या जाण विझी उनजा घराड़ा ज़रूरु करे। घराड़ा करण सां छा थींदो आहे जेको वायरस वग़ैरह हूंदो आहे उहो उनमहिल ई जेको आहे सो उतां रफ़ा थी वेंदो आहे, ख़तमु थी वेंदो आहे। पाणी गरम करे उन में लूणु विझी उनजा घराड़ा करणु तमामु ज़रूरी आहे, उन सां नकु साफ़ु करणु तमामु ज़रूरी आहे या उन गरम पाणी जी बाफ़ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। अदरक तमामु हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे सो शइ आहे, उहा इस्तेमालु करण सां चाय में तव्हां अदरक जो टुकड़ो विझी ऐं उहो चांहि काढ़े ऐं उहो चांहि पीअण सां छा थींदो आहे जेके बि

0: में तव्हांजे में ऐं अहिड़े क़िस्म जो एलर्जी अची वञे थी, कंहिंखे नज़लो आहे, ज़ुकाम आहे, खांसी आहे, या गले जो वर्म आहे, गले जी सोज़िश आहे, उहा उहांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। इहे हिकिड़ी कुदरती अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंजो को बि नुक़सानु कोन्हे, को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे, को न वरी को एॾो वॾो ख़र्चो आहे। इहे तव्हां इस्तेमालु करण सां काफ़ी मर्ज़नि खां, काफ़ी तकलीफ़ुनि खां तव्हां बची सघो था। अहिड़े तरीक़े सां तूतसिया शरबत तव्हांखे शहर में आम मिली वेंदो आहे, उहो गले जे लाइ तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। मिठी काठी जंहिंखे मुलेठी चवंदी आहिनि, मुलेठी जेको आहे सो तमामु बहितरीनु आहे, उनखे धोई करे चूसण सां बि गले जो वायरस जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदो आहे। पान जी जड़ उन जे लाइ तमामु जेको आहे सो बहितरीनु आहे। अच्छा, असां हिन मौसम में ॾिसो गर्मी आहे, पोइ यक थधो पाणी पीअंदा आहियूं। यक थधो पाणी पीअणु इंतिहाई नुक़सानकार आहे, इन जे करे पाणी हमेशह वैसे बि नॉर्मल सजर पाणी पीअणु घुरिजे, न त थोरो मामूली उनखे थधो करे उहो पाणी पीअण सां तव्हां तकलीफ़ुनि खां बची सघो था। सो नंढियूं नंढियूं इहे शयूं आहिनि जेके तव्हां एहतियात करे पाण खे बचाए सघो था हिन मौसम में जेको आहे सो। नंढनि ॿारनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे, जेके बुज़ुर्ग हज़रात आहिनि उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। सो अहिड़ियुनि शयुनि खां तव्हां परहेज़ कंदो, पासो कंदो, तव्हां बिल्कुलु पाण खे बचाए सघो था। ऐं इन हिन वक़्तु इहा मौसम जेको आहे सो आहे जंहिंसां तव्हांखे इहे तकलीफ़ूं थी सघनि थियूं, इन तकलीफ़ुनि खां बचाइण जा इहे ई इक़दाम आहिनि। जी असम भाई,
1: तमामु बहितरीन सर, हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी तव्हां,
0: महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन साहबु हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, ऐं हिन में स्पेशली हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तव्हां वठणी हूंदी आहे। ऐं कॉन्टेक्ट नंबर आहे या लाइव कॉल ज़रिए तव्हां शामिलु थी सघो था प्रोग्राम में, 0301-9196-8151, 0301-219-6851।

0: ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਲ ਜੀ ਤਰਫ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗੱਲ ਆਇਓ?
1: ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਗਾ ਗੁਟਕਾਵਾਲ ਖਾਨ ਚਾਹਾਂਗਾ
0: ਜੀ। ਇਹਦਾ ਛਾ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ।
1: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਮੇ ਜੋ ਪਾਸੋ ਥੋੜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਬੇਸਾ ਕੀ ਪਿਓ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਘਣੀ ਆ?
1: ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਆ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗੱਲ ਆਇਓ?
1: ਗੁਟ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਜਾਗਾ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਬਤੋ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏ ਜੀ ਸਰ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਚੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੋ ਜੋ ਬਰ ਵਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਛੋ ਜੋ ਖੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤੂੰ ਖੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਸੋ ਪੁੱਛਣੋ ਹੁੰਦੋ ਆਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਜੋ ਤੇਲ ਤਮਾਮ ਇੰਤਹਾਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਰਾ, ਛੋ ਜੋ ਜੈਤੂਨ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆਹੇ, ਐਂ ਜੈਤੂਨ ਜੋ ਤੇਲ ਤਮਾਮਿਨ ਜੇ ਲਾਇ ਅਕਸੀਰ ਆਹੇ। मालिश ना है करनी, रात के टाइम में लगाइणो है, लगाए बटे रात इस्तेमाल कर इंशाल्लाह ताला उन सही काफ़ी फ़र्क पैंव है। लेकिन तबियत दिसण तमाम ज़रूरी है, छोजो थी सके तो डायबिटिक पेशेंट हुए, शुगर जो पेशेंट हुए, ब्लड प्रेशर वधंदो हुए या को पैरालिसिस दे वेंदो हुए, वो जो पेशेंट साम्हूं ईंदो आहे उनखे ॾिसी करे दवा ॾेई सघिजे थी। अदेखे चवंदासीं त तव्हां बिल्कुलु फ़िलहालु जैतून जो तेल इस्तेमालु करियो, जेकॾहिं तव्हांखे फ़र्क़ु न पए त पोइ तव्हां रूबरू ॾेखारे सघो। जी साईं,
0: हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं असां त केर लाइन ते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अलाह केर पिया ॻाल्हायो?
1: ॾाढी
2: ख़ुशी थी आई तव्हां असांखे कॉल बि कंदा आहियो ऐं नंढड़ी या अहिड़ा के पेशेंट हूंदा आहिनि जेके तव्हां मोकिलींदा बि आहियो। ऐं इहो ई हिकिड़ो ॾाढी सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे कंहिंखे फ़ोन करे ऐं ॿुधाइण सां इनकरेज माण्हू थींदो आहे, अॻिलो बि जेको ॿियो पेशेंट हूंदो आहे त उन ते बि इहो ई असर पवंदो आहे त असांखे जेको आहे सो यानी हिकिड़ो फ़र्क़ु फलाणे हंधि फलाणी दवा माण्हू वरिती त पवे थो। इहे हिकिड़ा सुठी हिकिड़ियूं व्यूज़ हूंदियूं आहिनि, सुठियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं इहो हूंदो आहे ॿियनि जे लाइ सुठो सोचणु, ॿियनि जे लाइ सुठो सोचणु इन हवाले सां त जेकॾहिं अॻिले खे हिकिड़े खे फ़र्क़ु पियो आहे ऐं हू जेकॾहिं लाइव अची ॿिए खे ॿुधाए थो त यानी उहो उन ते बि असरु वेंदो त असांखे बि इते ई ॾेखारणु घुरिजे। त इहो इन सां हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी जेको आहे सो इहा अॻिले खे जीअं असां चवंदा आहियूं इनकरेज करणु यानी अॻिले खे हिमथाइणु थींदो आहे। इहो वॾी महिरबानी अदा खादम भाई,
0: तमामु बहितरीन सर हिकिड़ी ॼाण ॾिनो, हिकिड़ो पॉज़िटिव व्यू ॾिना हुनजी, जेका हुनजी पंहिंजी ख़ुशी हुई सर, जेका दवा वठी आहे उनखे फ़ाइदो पियो आहे, उहो ॿुधाइणु चाहियो ॿियनि खे जीअं माना ॿिया बि इनकरेज।
2: इहे इंसानियत आहे ऐं इहा ई जेको आहे हिकिड़ी सचाई आहे इंसान जी इंसान ॿिए इंसान सां, त अॻिले खे जेको बि असां ॾिसो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, ज़रूरी न आहे त असां वटि 100 मरीज़ अचनि था त 100 जा 100 ई ठीकु थी वञनि। ज़ाहिर आहे त असां हिकिड़ा नंढा डॉक्टर आहियूं, माण्हू किथे किथे ॾिसो जिते ऑपरेशन कराइनि था लेकिन उहे खे वरी उहो दुबारा मर्ज़ थी वञे थो या उते हॉस्पिटलाइज़ थियनि था, उते कोन था बची सघनि त पर जेकॾहिं असां वटि अहिड़े कंहिं कंहिं मर्ज़नि में पेशेंट अची वञनि था, अलहमदिल्ला मुंहिंजी असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे उन्हनि जे लाइ दुआऊं बि हूंदा आहियूं, दवा बि ॾींदा आहियूं त उनखे फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। पर जेकॾहिं उहो किथे जेकॾहिं कंहिंखे न बि थिए थो त उहो बि अलाह ताला जो हिकिड़ो जेको आहे सो हुकुम आहे, उनखे जेको आहे सो क़बूलु करणु घुरिजे। जी साईं
0: जी बिल्कुलु सर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8051। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो ॿीहर रिपीट कंदा हलंदासीं 0301-2196-8051। इन ते कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था। ऐं डॉक्टर साहिबु, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक, कन, गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे जी अल्सर तिली जो न वधण तिली जो वधण जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फ्रूणियूं ॿारनि में कद जो न वधण औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थियण जे लाइ नंबर आहे 0301-2196-8051। सर, हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
3: सर, क्या
0: हाल? अलहमदुलिल्लाह, ठीक ठाक। अदा तव्हां ॿुधायो, केरु पिया ॻाल्हायो, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
3: जी अलहमदुलिल्लाह, ठीकु आहियां। मां पीर वसण खां ॻाल्हायां पियो।
0: जी जी।
3: असांजो मरीज़ आहे हिकिड़ो, हुनखे तिली बि आहे, गोॾनि में सूर।
0: अच्छा
3: जी, हा। तव्हां एड्रेस ॿुधायो।
0: अदा एड्रेस असां रिपीट कंदा रहूं था, डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब जेके कोटड़ी रोड जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पेट्रो पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में जेको बिल्कुलु साम्हूं आहे डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक आहे।
3: तव्हां
0: रूबरू ॾेखारे वेंदो त वधीक बहितर आहे, बाक़ी डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो। जी सर।
2: जी साईं, बिल्कुलु लिखतफ़ बीहर पाण जेको आहे सो क्लिनिक जी एड्रेस पंहिंजे दोस्तनि ताईं ॿुधाईंदासीं। क्लिनिक जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड, ज़रूरु यादि रखंदा, साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेहरापुर शहर में जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण। कॉन्टेक्ट नंबर 0301-2196-8051। ॾींहं जेके असांजे क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, जुमो छंछरु आचरु सूमरु आंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, अरबा ऐं खमीस। हिन में टे ॾींहं स्पेशली जेको चेकअप फीस असांजी फ्री रखियल हूंदी आहे, चेकअप फीस फ्री रखियल हूंदी आहे, दवाऊं मरीज़ खे वठणियूं हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो असांजो पंहिंजे हिकिड़े सम्झो दिलि सां या हिकिड़े रियायती हिसाब सां हिकिड़ो पैकेज हूंदो आहे, जेको हफ़्ते में टे ॾींहं असां पंहिंजे पेशंट्स खे, हू बि जेको आहे सो को अहिड़ो मसइलो न हूंदो आहे, जेकॾहिं ॿियनि ॾींहंनि में बि को अहिड़ो पेशंट अची वेंदो आहे जेतिरो थी सघंदो आहे त उन्हनि जे लाइ असां कंदा आहियूं, लेकिन टे ॾींहं असांजा चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे। हिकिड़ो इदारे जो सिस्टम आहे जंहिंसां असां जेको आहे सो पाण खे हलायूं। वॾी महिरबानी।
0: ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसंदासीं कहिड़ा आहे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
1: नंढड़े खे जेको आहे खारस थी पिया पेर में।
0: जी जी।
1: हा,
0: कोटड़ी कबीर बिल्कुलु क़रीब आहे मेरापुर जे क्लिनिक ते, तव्हां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर थींदो, अदरवाइज़ तव्हांखे ॿुधाए थो डॉक्टर साहिब, रेडियो ॿुधो। जी जी, ठीकु आहे, ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, तव्हांखे ॿुधाए थो डॉक्टर साहिब। जी सर।
2: हा जी साईं, बिल्कुलु, देखे असां बि इहो ई अर्ज़ु कंदासीं त ॾिसो, हिकु त जेको आहे सो कुटड़ी वेझी आहे ऐं नंढड़ो ॿारु आहे, नंढड़े ॿार खे ज़ाहिर आहे हुन पहिरियां ॿिए हंधा बि ट्रीटमेंट ज़रूरु करे हूंदी, फ़र्क़ु न पियो आहे त बहितर असांजो ॾस इहो ई हूंदो आहे त हुनखे रूबरू ॾेखारे वञे। उन जे बावजूदु ॾस जेको असां ॾींदा आहियूं ख़ासि करे ख़ारिश जे हवाले सां, हिकु त निम जा पन पाणीअ में काढ़े उन सां विहचणु हिकिड़ो तमामु बहितरु जेको आहे, चाहे वॾो हुजे चाहे नंढो हुजे चाहे कहिड़े हंधि बि ख़ारिश हुजे, त उनखे निम जे पन जेको आहे सो सां विझाइणु, उन सां छा थींदो आहे जे निम जा पन जेके आहिनि से जरासीम कश हूंदा आहिनि, उन सां जेके बि बैक्टेरियाज़ वग़ैरह हूंदा आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा आहिनि। इन जे करे नंढड़े ॿार खे ज़रूरी बहितर इहो आहे त पाणी गरम निम जे पाणीअ में उनखे विझाइजे त बहितरु आहे। फ़िलहालु उन सां उनखे वॉश करे सघो था, बक़ाया दवा जे हवाले सां मां ॾसु इहो ई ॾींदुसि ऐं त बहितरु इहो ई आहे त उनखे रूबरू सुभाणे ॾेखारे वञे। महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सेज जी ॻाल्हि, असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब। डॉक्टर साहब जो कॉन्टेक्ट नंबर आहे 0301-2196-8051। इन ते कॉल करे कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहब खां कंहिं बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज
2: माँ पी जिंदा हैं अवां उन जो कदर करियो जितरो थी सके उन जी खिदमत करियो छो जो जन्नत माँ के पैरन के हेठा है उन खिदमत करण से ही अवां जो जेको आहे सो हिकिड़े हर लिहाज़ सां बहितरी थी सघे थी ऐं जेके बीमार आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो जेके इस्पतालनि में दाख़िल आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो असांखे ज़रूरु दुआ में यादि रखिजो वॾी महिरबानी
0: दुआ आहे त अलाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे अलाह हाफ़िज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बिलावल भुट्टो के भेटा पेश। सिंध के विरांग के खिलाफ करारदाद ते वोटिंग में हिस्सो न वठंदड़ जमातुन ते सख्त तनकीद। सिंध की वहदत बाबत वफाकी वजीर के बयान से सिंध हुकूमत जो सख्त रद्द अमल। सीनियर वजीर शर्जीलना मेमन चया है तो वफाकी वजीर की बयानबाजी सूबे खिलाफ सियासी जारियत के बराबर है। वफाकी हुकूमत वाजह करें तो ख्वाजा आसिफ जो बयान हुकूमती पॉलिसी है या संदस जाती राय। ख्वाजा आसिफ सिंध ए पीपुल्स पार्टी से बयानबाजी का पे तारीख आइन ए पार्लियामानी रिकॉर्ड जो मुतालो करें। पीपुल्स पार्टी जो मौकफ बरुखी न पर चिठो असूली आईनी है। पंजाब असेंबली इसराकी सूबे के हक में बेरा ए सिंध असेंबली सिंध में नवन सूबन खिलाफ अठ भेरा ठहराव मंजूर कर चुकी है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह घरू वजीर मोहसिन नकवी के बयान से रद्द अमल डींदे इंतजामी सुधारा ए सूबे की नई सिर जोड़ जक बिल्कुल मुख्तलिफ़ मामला। सूबा रुगो इंतजामी यूनिट ना उनकी तारीख सुणप सकाफत बोली ए आईनी हैसियत है। अवाम की राय के एहतराम की गाल है तो सिंध के अवाम की वाज राय जो भी एहतराम थे घुर्जे। सिंध की वहदत से का भी सौदेबाजी नी कर सकती। नवा सूबा ठाण से मसला हल ना मुस्तकिल हल गोलो पव। अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवन सूबन बाबत नेशनल पॉलिसी डायलॉग के खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी सूबाई हुकूमतू बादशाह का भी बुरी अंदाज में हली रही। बादशाह भी मुशावरत कंदा हुआ असाजा सूबा हिदायतों से हली रहा। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक नंढा सूबा ठाण से आब हयात पखिड़ी वो आइन की तोहन करनी है तो भली जेतरा वणियों सूबा ठाए छो को भी फर्क न पव। ममलकती वजीर ओन चौधरी तरक्की याफ्ता मुल्क में नंढा इंतजामी यूनिट कायम आन। नवन इंतजामी यूनिट्स से पार्लियामेंट अंदर ए बहर बहस थे घुर्जे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान तो सुठी हुकूमती निजाम लाए वा सुधारा आना पौंदा। अवामी नुमाइंद के अख्तियार दियण बिना मामला अगते न वधंदा। इंतजामी अख्तियार चूंडियल नुमाइंद वट हुजन घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ए बलोचिस्तान जहा रूट्स ऑफ बिजनेस आइन से टकराव में आन। आइनी फरार की मौजूदगी तीन सुधार की गाल बेमाना होंगी। सूबा चो या इंतजामी यूनिट एम क्यूम पैं मौकफ से बीठल है। एम क्यूम पैं मौकफ तब्दील ना कयो। भुट्टो के ठायल आइन में नवन सूबन की गुंजाइश मौजूद है। कराची में मीडिया से गालंदे एम क्यूम अगवान वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल तो पाकिस्तान जो पैसो चैन सूबन बदरा वीह माण में विरजे तो। सिंध में अरड़ साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबे में बुनियादी सहूलतू ना एक गटर भी संभाले नथा सकन। शहर की हालत भी इंतहाई खराब है। ही कदें सिंध के विरांगे कदें वरी इंतजामी यूनिटों की गाल कन था। नवन सूबन से मुल्क जा मसला हल ना पिटो मयार खत्म थे घुर्जे। ये मानू न कराची शहर से सच्चा आहन न ही भाई से सच्चा आहन। कराची में मीडिया से गालंदे मेयर मुर्तजा वहाब तो कराची के विरण की गाल कंदड़न सब का पेरी पान जिला टाउन ठाया हुआ। मुस्तफा कमाल जो दौर खत्म थी वो हाँ मुर्तजा वहाब जो दौर है। मुस्तफा कमाल 300 अरब रुपये के बजट जो हिसाब दे। लंडन में पाकिस्तान के सियासी मुलाकातों जो मरकज बनजी वो। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की मुलाकात जो इम्कान। जरियन मूजिब आजम नजीर तारड़ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात बाद 28 आइनी तरमीम से मुस्बत अकभराई थी है। बिलावल से मरियम की मुलाकात में भी आइनी तरमीम से गाल।
0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज ए होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03000338569।

प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003885 69

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।

Hello. Hello. Okay. मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहरापुर।

मिल्क प्राइस ब्यूटी शो में तमाम सुनने वालों को वेलकम भरीगार खुश आमदी जय अनु अर्शाद के और फखर रागले जी मिल्क प्राइस ब्यूटी शो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटी क्रीम ब्यूटी सोप एक्ने क्रीम खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले और अभी तक हम आपके फीडबैक के लिए मुंतजर हैं क्योंकि हम दावा नहीं दलील देते हैं।

मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स आपको जिन मेडिकल जिन जनरल स्टोर से मिलेंगी वो है फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हाफिज जनरल स्टोर मेहराबपुर और कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे 0300-310-5109। इस पे कॉल करके आपने बात करनी है मलिक जफर इकबाल या एम सिद्दीक साहब से।

हम एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ट्रैक की तरफ बढ़ने से पहले आज की रिडल देंगे. रिडल मींस पहली गुजारत. जी तो बहुत ही इंटरेस्टेड आज की रिडल है. पहली है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है. वह कड़ी शे आहे जेका धोण सा मेरी थी वेंदी आहे. जी आहे ना तमाम पजलिंग. बिल्कुल परेशान थियण अवां जो हक आहे. त इहा कहिड़ी शइ थी सघे थी जेका धोइण सां मेरी थी वेंदी.

वेलकम बैक। जिन दोस्तों ने अभी एफएम ट्यून किया है उनको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं मिल्क राइस ब्यूटी शो और मैं हूं आबिद चौहान। सॉन्ग की तरफ जाने से पहले हमने आपको एक रिडल दी थी पहली कि वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है। वह कड़ी शे आए जेका धोने से गंदी थी वी आए मेरी थी वी आए खोड़ सारा असि टीम जहाँ पैं दोस्त भी परेशान मुख्य नजर अचन पे काफ़ी मुख्य टैक्स अचन पे अड़ी कड़ी शे थी सके थी बिल्कुल अड़ी शे आए जेका धोने से मेरी थी वी।

रिडल बि हलंदी रहंदी, म्यूज़िक बि हलंदो रहंदो, हुन सां गॾो गॾु हिकु असां जनरल स्टोर में इज़ाफ़ो करे रहिया आहियूं। जनरल स्टोर अव्हांजे शहर में इज़ाफ़ो थी वियो आहे, अवेलेबिलिटी थी वई आहे प्रोडक्ट जी अव्हांजी बेहद असरार खां पोइ। हींअर जेको आहे त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ते। ऐं हिन सां गॾो गॾु ऑलरेडी सभ खां पहिरियां जिन जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अॻु में ई मौजूदु आहे उन्हनि में शामिल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर।

अञा बि इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां किथे बि अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट जी कराइण चाहियो था त डेफिनेटली अव्हां खे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी ऐं असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109. इन ते कॉल करे अव्हां मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी ऐं प्रोडक्ट जे बारे में वधीक ॼाण हासिल करे सघो था।

ऐं असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल करे असांखे प्रोडक्ट जे बारे में बि ॼाण हासिल करे सघो था। ऐं रिडल मूं अव्हां खे ॿुधाई गुजारत त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका धोइण सां गंदी थी वेंदी आहे, मेरी थी वेंदी आहे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है।

अवां रिडल जो रिप्लाई असांखे टैक्स वसीले बि करे सघो था, पर असांखे अवां जी कॉल जो इंतज़ारु रहंदो। असांजो कॉलिंग नंबर आहे 03939316।

जी त पोइ अॼोकी टिप आहे, ॿुधाए छॾियूं, अॼोकी टिप आहे बिल्कुल ही मुफ़्त जी, मशवरे सां गॾो गॾु उहा टिप में बि को ख़र्चो न आहे। उहो आहे पाणीअ जो इस्तेमालु, साफ़ सुथिरो पाणी। अव्हां खे पाणी त ॻोठनि में ऑलरेडी या भर पासे वारे शहरनि में, ज़मीननि में, ॿिन्हिनि में, कुझु शहरनि जे विच में जेको आहे त पाणी खारो बि हूंदो आहे, पर पाणी मिठो, वधि में वधि पाणीअ जो इस्तेमालु, पाणी मुंहुं धोइण सां गॾो गॾु पाणी पीअण लाइ इस्तेमालु करण में, उन ते बि चहिरे ते ग्लो ईंदी आहे। पर डेफिनेटली अव्हांखे यादि हुअणु घुरिजे त अव्हांखे ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप ऐं एक्मी क्रीम, मिल्क राइस जी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी करणी आहे।

अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और ट्रैक है बहुत ही सुपर डुपर, हमारे बहुत ही प्यारे हरदिल अजीज सिंगर असरार का।

जी तो मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेहराबपुर के इन जनरल स्टोर पे, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर और जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर। और इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। इस पे कॉल करके आपने बात करनी है मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक साहब से।

प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, मां जंहिंजी ख़ातिर पाण भुलाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे।

हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300 931 9667। इस पे कॉल करके आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इसके अलावा हमारी आज की रिडल पहेली गुजारत जो जवाब पंडई से गुजर।

झड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, झड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसात खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, तोहें त ॼण ख़िज़ा में बि मौसम बहार हुई, हर पासे प्यार जी पिरी प्यारा पुकार हुई, सखियूं पींघुन में गाए थे पए लुॾियूं, तो मुझे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, मूं तुंहिंजो नाओ हो लिखियो तो मुंहिंजो नाओ हो, साॻे ई वण ते आ मिठा अॼु बि लिखियलु उहो, छो यादूं दिलि तां तो मेटे छॾियूं, तो मुंहिंजे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, चाहत सां ॾिसी चपन में ई खिली पवण, आबिद आहिनि यादि घारियल सभई घड़ियूं, तो मुंहिंजे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसाति खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मुंहिंजे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं,

जी त दोस्तो मिल्क राइस जो प्रोडक्ट्स असां जो अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर महराबपुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर महराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर महराबपुर, कोरी जनरल स्टोर महराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर महराबपुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे वेझे कंहिं स्टोर ते चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर मिलाइणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109। इन ते कॉल करे अव्हांखे ॻाल्हि करणी पवंदी मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ऐं एम सिद्दीक़ साहिब सां।

जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ दिल मुझी धोखे सा कई तो तक काबू आ जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ दिल मुझी धोखे सा कई तो तक काबू आ हिंद सिंध सुहिणा तुझे हुस्न जी हाका सूरत अड़ी सुहणी ठाही रब पाका नरुगो सखर या शिकारपुर खैरपुर मोरो नवाब शाह दीवानो सजो दादू आ जादूगर सुहिणा तुझी अखियन में जादू आ।

GFM 94 ऐं ॿुधी रहिया आहियो मिल्क राइस ब्यूटी शो। अवां सभिनी सॼणनि जे नाउ शमर अली मीरालीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ख़ूबसूरत ट्रैक, लेट्स एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइसी ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं आवां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 मैरापुर. जी दोस्तों अवांजा खोड़ सारा टैक्स मैसेजिस मौसूल थी रहा आहिनि जंहिंजो बि राइट आंसर हूंदो उहो असां प्रोग्राम जे आख़िर में फॉर्मेट मुताबिक़.

और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी आपके अपने शहर फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर और जावेद जनरल स्टोर मैरापुर।

और इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और कहीं करवानी है अपने करीबी किसी स्टोर पे, तो उसके लिए आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करना पड़ेगा, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। आपने बात करनी पड़ेगी मलिक जफर इकबाल साहब और एम सिद्दीक साहब से।

0: अच्छा जी, प्रोग्राम में कॉल पियो छे, असा कॉल शामिल कंदा से। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? अवां जो आवाज तमाम घट पियो छे जी, काइंडली एक बेरो भी रिपीट कर जो। हेलो,
1: हेलो
0: जी जी जी, हाने वाजे हैं, क्लियर पे हो ची आवाज, केर सही किथा का?
1: हां मिठा सही नवाबी।

0: ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ਿਆਲ
1: ਨਵਾਬੀ ਸੰਗਤ ਮਾਂ
0: ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ਿਆਲ
1: ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਵੈਲਕਮ ਬਲੀਗਾਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਪੈਰਾ
0: ਮੂੰਖੇ
1: ਬਿ
0: ਖਰਾਬ
1: ਕੋਨ ਚਿਓ ਆ ਮੂੰ ਖਰਾਬ ਕੋਨ ਚਿਓ ਆ ਵਾ ਧੋਣ ਸਾ ਮੇਰੀ ਥਿੰਦੀ ਆ ठीक है हां जो आंसर ऐसा नोट क्यों था आखिर में जो आता सा इन जो रिप्लाई दींदा से प्रोग्राम बुद्धा रजो का पैगाम को पैगाम को न्यापो को सलाम को दुआ को दोस्तन के
0: मिठा से मुझे नवाबी संगत में कुछ दोस्त हैं
1: जी
0: उनन का कुछ मां उनके सलाम जान चाहो मुनीर अहमद ख्याल के सलाम आए अजीबला फुलपट के मंजूर हुसैन फुलपट के आए साईं सिकंदर शाह रहमान शबान के सलाम अदी शबीर आए मैडम खुदस के सलाम आए जेके दोस्त बाहर
1: ਸਲਾਮ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਕੇ।

जी त हुसैन बख्सियाल साहब जो रिप्लाई हुयो उहो अवां ॿुधो ऐं अवां जा कुझु टेक्स्ट मैसेज बि आयल आहिनि जिन जिन दोस्तनि जो जेको रिप्लाई आहे असां आख़िर में हुनजो राइट आंसर ॾींदासीं। अवां ॿुधी वठंदो त गुजारत कंहिं भॻी कंहिं कंहिं भॻी हा खोड़सारा बि वञी सघनि था उन ॻाल्हि खे असां ॿुधण खां पोइ डिस्क्लोज़ कोन था कयूं। लास्ट असांजो टाइम बचियो बि आहे 6 मिंट लॻभॻि। असां हिकिड़ो अवां लाइ ख़ूबसूरत ट्रैक बि प्ले कंदासीं। यादि रहे तव्हां प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियो मिल्क राइस ब्यूटी शो। असांजी ब्यूटी जूं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स आहिनि ब्यूटी क्रीम ब्यूटी सोप एक्नी क्रीम। खूबसूरती जो नज़र आए भरोसा जो दिल जीत ले और हम दावा नहीं दलील देते हैं। असांजी प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अवां पंहिंजे कंहिं जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन ते कॉल करणी पवंदी। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109 ऐं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर असां कॉल्स अटेंड कयोसीं। हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु लॻभॻि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे सो असां अव्हां सरणनि लाइ आख़िरी ट्रैक प्ले कंदासीं। पर ट्रैक प्ले करण खां पहिरियों अव्हांखे रिडल यानी कि गुज़ारे जो इंतज़ारु हूंदो। जी हाँ बिल्कुल जिन दोस्तनि इहो रिप्लाई ॾिनो आहे त धोइण सां उहा कहिड़ी शइ आहे जेका मेरी थी वेंदी आहे। बिल्कुलु दोस्तो धोइण सां फ़क़ति पाणी मेरो थींदो आहे छाकाणि त जंहिं बि शइ ते इस्तेमालु कंदासीं त पाणी मेरो थी वेंदो बाक़ी उहा शइ साफ़ थी वेंदी। वो चीज़ पाणी है जो धोने से मैला हो जाता है छाकाणि त पाणी सां का बि शइ धोईंदासीं उहो पाण मेरो थी वेंदो पर ॿिए खे चमकाए छॾींदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो ऐं ही लास्ट में म्यूज़िक ट्रैक अवां महबूबनि जे नाव मूंखे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत साध सलामत अलाह निगेबान।

0: मलिक अहमद खान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुरिजे। पंजाब, सिंध, केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमानी हूंदी।
1: सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा तकरारी बयान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खां नोटिस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े जी सदारत हेठि इजलास दौरान वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। सिंध असेंबलीअ मां तारीख़ी ठहराउ मंज़ूर करण ते एम पी ए सदर आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मुराद अली शाह खे ख़िराज तहसीन पेश। इजलास में ख़बरदार कयो वियो त आइन में तरमीम लाइ वफ़ाक वटि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मौजूदु नाहे, तंहिं करे जमहूरियत जे तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे। पीपल्स पार्टी 18 तरमीम सूबाई ख़ुदमुख्तियारी, सिंध जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते धाड़ो हण न ॾींदी। वफ़ाक़ी वज़ीरनि सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ तकरारी बयाननि खां पासो न कयो त सम्झो वेंदो इन साज़िश जे पुठियां वफ़ाक़ी हुकूमत शामिल आहे।

0: ஐரன் ஸ்டோர் ஹாலானி ஹோல்சேல் டிபோ அ நேம் டு பி ட்ரஸ்டட்
1: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல் பட்டி லோஹி தரவாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரிய دستیاب ஐ
0: ஹானே யச்சு மெஹரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
1: ராப்தி லை ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601000
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छ नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03015541456 आई तौकीर अहमद 03616237393
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
1: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिय दस्तियाब आई
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
1: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109, 0300-310-5109।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
1: कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात। फील्ड मार्शल के बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों, अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने लाए जारी कदम से ब्रीफिंग दिनी वही। बलूचिस्तान की समाजी ए इक्तसादी तरक्की लाए मामलत बाबत मामलों को भी जायजो वरतो वो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौजी जवानों के पेशेवरानी सलाहियत, ऑपरेशनल तैयारी ए अजम के साराईदे त बलूचिस्तान के अवाम जो अमन, खुशहाली ए भलाई रियासती कोशिशों को मरकजी महवर है। मुस्तहकम महफूज माहौल सूबे में तरक्याती मनसूबन, मुआशी मौक़ के हथी डेण ए अवाम के बेहतर मुस्तबिल के इम्कान के हथी डेण में मददगार साबित।
2: आजकल बहुत सारी जज्बाती तकरीर हो रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में। ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो सकता, किसी एक सूबे का फैसला नहीं हो सकता। हुकूमत को बैठना चाहिए, अपोजिशन को बैठना चाहिए, सूबों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
3: केर जज्बाती न थिए, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा। को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके न तो सके, मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो। रुगो अख्तियार हेठी सतह ताईं मुंतकिल थींदा। दखण या उत्तर पंजाब ठहण सां पंजाब जी हैसियत खत्म न थींदी। ईअं ई सिंध में इंतजामी यूनिट थियण सां सिंधियुनि खां को पंहिंजी सुञाणप कसे न सघंदो। आउं हिन नौकरी ते रहां या न रहां, मामले तां पोइते न हटंदुसि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो लाहौर में तकरीर का ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न, पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तमु करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत नाहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुर्जे। ऐं हिन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
1: नवा सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरी अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नऊन लीग जे ख्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबे हयात पखिड़िजी वेंदो? आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। मुल्कती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुरिजे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे अख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी अख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुरिजनि। पंजाब सिंध KP ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आईनी फ़राड जी मौजूदगी ताईं सुधारण जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।